0: भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए
1: जबने

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

चलिए सुबह आज एक सवाल से शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिंपली आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड सुबह मुझे बताइए, आपकी जो शुरुआत होती है मॉर्निंग की, ऑफिशियली कब से स्टार्ट होती है? अलार्म बजने पर, चाय कॉफी के बाद हो जाता है, या जब आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई अब उठना ही पड़ेगा, यही काम है, या फिर जब गाड़ी में बैठ जाते हो फाइनली ऑफिस के जाने के लिए कि हाँ अब हमारी मॉर्निंग हुई है? बिकॉज ऑनेस्टली हर किसी की मॉर्निंग का अपना एक अलग सिस्टम होता है। किसी के घर में ऑलरेडी फुल ऑन ट्रैफिक केओस चल रहा होता है, किसी का स्कूल रन शुरू हो गया होता है, कोई ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, और कोई अभी भी मेरे ख्याल से बेड पे बस 5 मिनट्स और नेगोशिएट कर रहा होगा। व्हाटएवर स्टेज ऑफ द मॉर्निंग यू आर एट, मैं आ गई हूँ यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए और एक गारंटी देने के लिए कि भाई देखो, शुरुआत अगर हमारे साथ की है ना 89.6 FM पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन के साथ, तो जबरदस्त गाने और जबरदस्त मूड इज एब्सोल्युटली गारंटीड। सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स रादर किक स्टार्ट दिस डे विद दिस फैंटास्टिक ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का, मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: Well, my friends, now that the weekend is here,
1: एक सवाल तो उठ ही जाता है भाई, OTT पे क्या आ रहा है? आफरीन बताओ तो जरा.
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. एंड थैंकफुली इस हफ्ते वीकेंड पर ऑप्शंस जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के हैं.
2: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है.
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है.
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल, ओटीटी मार्केट में नई की अगर बात करें तो अगर आपको क्राइम एक्शन है, थोड़ा सा देसी रग्ड ड्रामा पसंद है, देन घमासान शुड बी ऑन योर लिस्ट. प्रतीक गांधी प्लेज एन आईपीएस ऑफिसर हु इज आफ्टर अ फियर डेकॉयड, प्लेड बाय अर्शद वारसिये. एक्चुअली यस, ये Z5 पर है और इसके डायरेक्टर पता है कौन है? तिग्मांशु धूलिया. नाम सुन के अगर इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं बता दूं, पान सिंह तोमर, ये वाली उन्होंने डायरेक्ट की है मूवी हासिल, साहेब बीवी और गैंगस्टर, ये सारी मूवीज यस तिग्मांशु धूलिया की ही डायरेक्ट है. So you know this world of crime, power and this everything is pretty much familiar territory for him. Now let's go on to the next one. Prime Video पर एक और है जो है revolutionaries. निखिल अडवाणी की historical drama series है which takes us into the stories of young revolutionaries during India's freedom struggle. So history with action and drama, then this one's for you. Let's talk about the next one. Netflix पर Gandhari is already streaming. तापसी पन्नू in a very intense action thriller. एक माँ है जो अपने किडनैप डॉटर को ढूंढ रही है. सो डेफिनेटली बहुत डार्क है और बहुत ही इमोशनल पैक्ट एज वेल. बट पर्सनली एक शो है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी एंड दैट इज चुंबक, बिकॉज दिस फील्स सो मिडिल क्लास फैमिली फेमिलियर. मतलब हम बहुत रिलेट कर पाते हैं. वो नेबर्स जो बिना अपॉइंटमेंट हमारे घर आ जाते हैं, आपके घर में क्या हो रहा है उनको आपसे पहले पता होता है, और टेक्निकली पड़ोसी होते हैं बट प्रैक्टिकली they are the extended families and that's how it worked, right? जहाँ हम बचपन में इसी माहौल में बड़े हुए हैं. And that's this entire story is about चुंबक. Five families है, एक colony है, and everybody involved in everybody else's life. और बहुत ही interesting star cast है. नीना गुप्ता, देवेन भुजानी, सुमित राघवन, सुमित व्यास, अर्जुन बिजलानी. Wow, I just love this ensemble cast. And well, Netflix पर ये है. So कितनी सारी चीजें बता दी ना मैंने, thriller, history, action, family drama, everything. आपके लिए ऑप्शंस है दिस वीकेंड. माइक से दिल तक आप फ्री हैं आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एजी द गैंगस्टर।
1: अरे तुझे पता है उसके साथ क्या हुआ था? और बस यहीं से शुरू होती है हमारी फेवरेट वाली एक्टिविटी यानी गॉसिपिंग की। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सिंपली आफ्टरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये जो गॉसिपिंग की अगर आदत है ना आपकी कतर में, तो ये बहुत महंगी पड़ सकती है आपको, क्योंकि ये अब कतर में एक्चुअली एक सीरियस मैटर बन चुका है। अंडर आर्टिकल 331 ऑफ कतर पेनल कोड लॉ नंबर 11 ऑफ 2004, इफ यू पब्लिकली स्प्रेड न्यूज, फोटोग्राफ्स और कमेंट्स कनेक्टेड टू किसी की प्राइवेट लाइफ या उनकी फैमिली लाइफ, आपको एक साल की जेल हो सकती है या फिर फाइन अप टू 5000 कतरी रियाल या फिर आइदर ऑफ दीज पेनल्टीज। एंड यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि इवन इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, किसी की प्राइवेट या फैमिली लाइफ से जुड़ी चीजें पब्लिकली शेयर करना कैन स्टिल लैंड यू इन ट्रबल। सो बेसिकली किसी की पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसका कॉन्टेंट मत बनाओ, बिकॉज प्राइवेसी सिर्फ तब इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना जब हमारी बात हो, दूसरी की होती है तब भी इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। तो फिर अगली बार अगर कोई फ्रेंड कोई आपसे कहे ए पता है क्या एक जूसी गॉसिप है मेरे पास, किसी को बताना मत, तब उसको ये कहना वाओ परफेक्ट, तो फिर एक काम करना मुझे भी मत बताना। आप ना सेफ भी रहेंगे और ये 5000 कतरी रियाल में कुछ अच्छी शॉपिंग कर लेना ना। माइक से दिल तक आफरी ने आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
3: सही है सही है।
4: बाकी सारी फेक लगे देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

Well, 25 million services in 6 months. These are all huge numbers, hai na? Lekin kis cheez ke hai ye? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और ये जो बड़े आंकड़े मैंने सुनाया आपको 25 मिलियन एंड ऑल, ये हमारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं. यस, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट नंबर्स आर आउट एंड इन जस्ट फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 HMC डिलीवर्ड 25 मिलियन हेल्थ केयर सर्विसेज. नाउ दैट्स अ वोपिंग फिगर. वेल दैट इंक्लूड्स अराउंड 1.5 मिलियन आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट्स, 40,000 सर्जरीज, 700,000 इमरजेंसी cases and even 50,000 home visits. But mere liye sabse interesting number ye hai. The average waiting time for a first specialist appointment jo pehle 58 days tha, ab wo seedha 16 days par aa gaya hai. Aur HMC ka eventual target hai ab isko 14 days karna. And they have done this through things like evening clinics, two shift operations and working with private hospitals to manage some cases. Plus healthcare is becoming more digital too, hai na? Through the Labai app. If I'm right pronunciating, it's LBAIH. ये app के through patients का access का जो है अब services और बढ़ जाती है. Appointment management कर सकते हैं उसके through. Medical information मिल सकती है. काफी सारे नए features है. Access to radiology reports है. So 25 million is definitely an impressive number, but perhaps

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. It is brought to you.

0: बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
1: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

देखिए आजकल के बॉलीवुड मूवीज में अगर 5 से 6 गाने हो जाए तो वी फील के हाँ इट्स अ प्रॉपर म्यूजिकल एल्बम, लेकिन जस्ट इमेजिन वॉचिंग अ मूवी विद 72 सॉन्ग्स इन इट. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और बॉलीवुड और गानों का रिश्ता तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है. कभी कभी हमें मूवी की स्टोरीज जो है वो याद नहीं रहती, लेकिन ऑफ कोर्स गाने म्यूजिक एल्बम्स ना ये याद रह जाते हैं. एंड बॉलीवुड में एक्चुअली ऐसी काफ़ी सारी मूवीज है जिसमें ना हमारी सोच से भी ज़्यादा गाने हैं. पहले तो चालू करते हैं उसके साथ वो मूवीज़ जो आपको पता है कि हाँ इसमें तो ज़्यादा गाने हो सकते हैं. जैसे रॉक स्टार जैसी मूवीज़ में 14 गाने थे ये रॉकस्टार जैसी मूवी में, बिकॉज यार ये पूरी म्यूजिकल बेस्ड मूवी थी तो समझ में भी आता है. एंड देन कमिंग टू आर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फैमिली फिल्म्स एंड दैट इज हम आपके हैं कौन, इसमें भी 14 गाने थे. एंड मुझे जेन्युइनली लगता था कि यार हम आपके हैं कौन मस्ट बी टॉपिंग द लिस्ट यार, बट नहीं ऐसा नहीं है. यू नो वॉट, बैजू बावरा में 17 गाने थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रणवीर सिंह की एक मूवी है जिसमें 18 गाने थे एंड दैट वॉज गली बॉय. चलो ये भी समझ में आता है. नाउ डिड यू नो रणबीर कपूर की एक मूवी है जिसमें 21 सॉन्ग्स थे, क्योंकि उस मूवी में ना कॉन्वर्सेशन वर मोर लाइक सॉन्ग्स. नाउ यू आर थिंकिंग विच मूवी इज दिस, वेल दिस वॉज जग्गा जासूस. शायद आपने ये नहीं देखी होगी, लेकिन ये मूवी वॉज स्ट्रक्चर्ड ऑलमोस्ट लाइक अ म्यूजिकल. तो डायलॉग्स तक समटाइम्स सॉन्ग्स के थ्रू ही फ्लो किए जाते थे. बट अभी तो चलो 21 को साइड में रखते हैं, बिकॉज द फिल्म आई मेंशन्ड एट द बिगिनिंग विद अ स्टैगरिंग 72 सॉन्ग्स वॉज अ 1932 की मूवी इंद्रसभा. सोचिए 72 सॉन्ग्स इन वन मूवी, वॉट कुड इट बी. आई मीन आई कांट इवन इमेजिन. मतलब आज के हिसाब से एक फिल्म के अंदर पूरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट का कॉन्टेंट, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए. मीनवाइल आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची एक मजेदार ट्रिविया के साथ. और जहाँ जग्गा जासूस की मैंने बात की थी, तो चलिए अगला गाना अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार, आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे भसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने ले गया,
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ,
4: ओनली ऑन मिर्ची। हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

देखो सबर का फल मीठा होता है और हर अच्छी चीज को ना थोड़ा सा समय लगता ही है। And GCC का Unified Tourist Visa definitely falls in this category. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. और इसकी बात ना हम काफी time से सुन रहे हैं. जानती हूँ मैं. In fact, 2023 में GCC countries ने Unified Tourist Visa को officially approve किया था. उसके बाद से 6 countries के बीच technical systems, passport authorities, immigration और regulatory requirements को coordinate करने का काम चल रहा था. अब ये visa exactly है क्या? पहले वो बता दूं मैं आपको सिंपल वर्ड्स में. आइडिया ये है कि एक यूनिफाइड टूरिस्ट वीजा के थ्रू ट्रैवलर्स कतर, सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान को कवर कर सकते हैं, मेकिंग मल्टी कंट्री जीसीसी ट्रैवल मच इजियर. वैसे ही जैसे आप शंगन वीजा लेते हैं, यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए एक वीजा काफी सारी कंट्रीज कवर कर लेती है, बस उसी तरह से ये एक वीजा जीसीसी के 6 कंट्रीज को एक साथ कवर करेगी. और देखो 6 कंट्रीज को एक सिस्टम पर लाना है तो प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ना. That's obvious, but the good news is this that GCC Secretary General ke according प्रोजेक्ट अपने फाइनल टेक्निकल एंड रेगुलेटरी स्टेजेस में पहुंच चुका है. ऑफिशियल लॉन्च डेट और फाइनल रूल्स का अभी वक्त है. हाँ थोड़ा वक्त है ऑफ कोर्स, और कोई बात नहीं, अपना वक्त ले लीजिए, लेकिन ये जो वीजा है ये जरूर जब आएगा ना तब देखना कि हमारे जो गल्फ कंट्री का टूरिज्म गेम भी ऊपर जाएगा. एंड इट इज गोना बी सो बेनिफिशियल फॉर ऑल द ट्रैवलर्स, फॉर ऑल द बिजनेसेस आउट देयर. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
0: रेडी
5: रेडी
0: टू लर्न
5: यस
0: टू प्ले
5: एब्सोल्युटली
0: टू ग्रो
5: विद मेजराती।
0: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स
5: मिल्क चीज योगर्ट लवने एग्स।
0: फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच बॉक्स एंड स्नैक्स मेजराती हैज योर फैमिली कवर्ड। ग्रो विद मेजराती फ्रेशली फ्रॉम कतर।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: वेल, अगर अगले साल आपका या आपके कोई जानने वाले का प्लान है हज पर जाने का, तो अगली खबर जरूर आपके लिए है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आज की खबर कुछ ऐसी है।
1: क्या खबर कतर?
0: द कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड दैट हज रजिस्ट्रेशन फॉर द अपकमिंग सीजन यानी 2027 के लिए अब ये शुरू होने वाले हैं 20 सितंबर से। ओके, और ये जो है ये कंटिन्यू रहेंगे अंटिल 20th of October थ्रू द ऑफिशियल हज वेबसाइट। और कतर का कोटा इस साल का है 4,400 पिलग्रिम्स का। अब एलिजिबिलिटी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कतरी सिटीजन के लिए तो एटलीस्ट 18 ईयर्स होने चाहिए एंड यू कैन एड अप टू 3 कंपेनियंस। वेयर एज रेसिडेंट्स और जीसीसी सिटीजंस यानी हम और आपके लिए द एप्लीकेंट हैज टू बी 45 ईयर्स या अबाव, और इन्होंने जो एप्लीकेंट है इससे पहले कभी हज परफॉर्म ना किया हो। एंड द रेसिडेंट जो भी अप्लाई करने वाला है नीड्स एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस रेसिडेंसी इन कतर, और ये कोई एक कंपेनियन अपने साथ एड कर सकते हैं। वेल, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है दैट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज द फर्स्ट स्टेप। इट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू हेल्थ सेंटर्स across Qatar and with the result linked electronically to the Hajj system. अब registration जो है इसकी ये 20 October को बंद होने वाली है, और approvals जो है इसकी expected है via SMS by the end of the October. तो अगर आपका इरादा है अगले साल या आपके कोई जानने वाले का इरादा है हज का अगले साल, तो ये information उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। और साथ ही साथ दुआओं में मुझे बिल्कुल नाम के साथ में याद रखिएगा, यानी simply Afreen, right here on Mirchi, it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
2: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
1: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
5: The Mentalist, Suhani Shah.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ।
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

Well, अगर आप कोई रेस्टोरेंट रन करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, या मे बी यू आर दैट पर्सन हुज कैमरा रोल इज बेसिकली अ लव लेटर टू कतर, देन लिसन अप. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai. This beautiful morning and Afreen kehna chahti hai that application for the Qatar Tourism Award 2026 are open. Aur aapke paas iske liye apply karne ka waqt hai 16th of September tak. Well, bata do aapko, this is the fourth edition of the awards organized by Qatar Tourism in collaboration with UN Tourism, recognizing people, businesses and organizations contributing to Qatar's tourism experience. Ab yahan ki categories ki baat kare, to range kaafi interesting hai. सर्विस एक्सलेंस, गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंसेस, आइकॉनिक अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कम्युनिटी लीडरशिप. लेकिन मेरी फेवरेट लिटिल अपडेट दिस ईयर ये है दैट कंटेंट क्रिएटर्स ऑल इयर्स अप इफ यू आर लिसनिंग टू मी, बिकॉज द डिजिटल फुटप्रिंट कैटेगरी नाउ इंक्लूड्स अ न्यू आउटस्टैंडिंग कतर व्लॉग ऑफ द ईयर अवार्ड. सो अगर आपका कंटेंट एक्चुअली शोकेस करता है कतर को, एक कतर की कहानी बताता है, अपेरेंटली योर एंडलेस शूटिंग एंड एडिटिंग हैज समवेयर रादर ऑफिशियल टू गो नाउ, एंड पार्टिसिपेशन पता है बिल्कुल भी फ्री है. कतर टूरिज्म इज ऑल्सो कंडक्टिंग वर्कशॉप्स टू गाइड एप्लीकेंट्स थ्रू रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया एंड सबमिशंस, एंड सपोर्ट इज अवेलेबल थ्रू द 106 कॉन्टैक्ट सेंटर. सुन रहे हो आप, 106 कॉन्टैक्ट सेंटर. सो बेसिकली डोंट जस्ट डू गुड वर्क एंड होप समबडी नोटिसेस. कभी कभार खुद को, आपको अपने आप को विजिबल करवाना पड़ता है कोई कमरे में. वेल, एप्लीकेशन क्लोजेस ऑन 16th ऑफ सितंबर. सो इफ दिस साउंड्स लाइक यू और समवन यू नो, मे बी फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन बिफोर दे से यार मुझे तो पता ही नहीं था. माइक से दिल तक आफरीन है यहां पर सब कुछ बताने के लिए. ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gambala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
3: वेरी फाइन, थैंक यू।
4: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
4: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे।
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: मतलब ये गेम है क्या? ये
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
3: आओ मिलो,
4: चिलो शालो,
3: शालो,
4: कच्चा धागा,
3: कच्चा धागा,
4: रेस लगा लो,
3: रेस लगा लो,
4: दस
3: पत्ते तोड़े,
4: एक पत्ता कच्चा,
3: एक पत्ता कच्चा।
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
3: तोड़े,
4: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
3: दस दस दस पत्ते तोड़े,
4: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
3: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
4: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
3: मिस्टर
4: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कोई सुनेगा तो
4: नहीं सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: गोल्ड अपडेट।
1: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टर टीम को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम टू चेक आज के गोल्ड रेट्स। वेल टुडेज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार लेडी फॉर्चुना इज फॉर 584 कचरी रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2737 कचरी रियाल। 10 ग्राम पैम्प गोल्ड बार इज फॉर 5405 कचरी रियाल, वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16707 कचरी रियाल। और 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 62,038 कतरी रियाल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: Well, my friends, now that the weekend is here,
1: एक सवाल तो उठ ही जाता है भाई, OTT पे क्या आ रहा है आफरीन, बताओ तो जरा।
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। एंड थैंकफुली इस हफ्ते वीकेंड पर ऑप्शंस जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के हैं।
2: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है,
4: एकदम नया आया है।
5: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल, ओटीटी मार्केट में नई की अगर बात करें तो अगर आपको क्राइम एक्शन है, थोड़ा सा देसी रग्ड ड्रामा पसंद है, देन घमासान शुड बी ऑन योर लिस्ट। प्रतीक गांधी प्लेज एन आईपीएस ऑफिसर हु इज आफ्टर अ फियर डिकॉयड, प्लेड बाय अर्शद वारसिये। एक्चुअली यस, ये Z5 पर है और इसके डायरेक्टर पता है कौन है? तिग्मांशु धूलिया। नाम सुन के अगर इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं बता दूं, पान सिंह तोमर, ये वाली उन्होंने डायरेक्ट की है मूवी हासिल, साहेब बीवी और गैंगस्टर, ये सारी मूवीज यस तिग्मांशु धूलिया की ही डायरेक्ट है। सो यू नो दिस वर्ल्ड ऑफ क्राइम पावर एंड दिस एवरीथिंग इज प्रीटी मच फैमिलियर टेरिटरी फॉर हिम। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्राइम वीडियो पर एक और है जो है रेवोल्यूशनरीज, निखिल अडवाणी की हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है, विच टेक्स अस इनटू द स्टोरीज ऑफ यंग रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सो हिस्ट्री विद एक्शन एंड ड्रामा, देन दिस वन्स फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेटफ्लिक्स पर गंधारी इज ऑलरेडी स्ट्रीमिंग। तापसी पन्नू इन अ वेरी इंटेंस एक्शन थ्रिलर, एक माँ है जो अपने किडनैप डॉटर को ढूंढ रही है, सो डेफिनेटली बहुत डार्क है और बहुत ही इमोशनल पैक्ट एज वेल। बट पर्सनली एक शो है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी एंड दैट इज चुंबक, बिकॉज दिस फील्स सो मिडिल क्लास फैमिली फेमिलियर, मतलब हम बहुत रिलेट कर पाते हैं। वो नेबर्स जो बिना अपॉइंटमेंट हमारे घर आ जाते हैं, आपके घर में क्या हो रहा है उनको आपसे पहले पता होता है, और टेक्निकली पड़ोसी होते हैं बट प्रैक्टिकली इतने एक्सटेंडेड फैमिलीज, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्ड है ना, जहां हम बचपन में इसी माहौल में बड़े हुए हैं। एंड दैट्स दिस एंटायर स्टोरी इज अबाउट चुंबक। 5 फैमिलीज है, एक कॉलोनी है, एवरीबडी इन्वॉल्व इन एवरीबडी एल्स लाइफ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट है। नीना गुप्ता, देवेन भुजानी, सुमित राघवन, सुमित व्यास, अर्जुन भिजलानी, वाओ आई जस्ट लव दिस एंसेंबल कास्ट। एंड वेल नेटफ्लिक्स पर ये है। सो कितनी सारी चीजें बता दी ना मैंने, थ्रिलर, हिस्ट्री, एक्शन, फैमिली ड्रामा, एवरीथिंग आपके लिए ऑप्शंस है दिस वीकेंड। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
7: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
8: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
9: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
10: मिर्ची, it's hot.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn?
1: Yes!
0: To play?
1: Absolutely!
0: To grow?
1: With Maserati!
2: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
1: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
2: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: अब इसे फिल्टर कहिए, मास्क कहिए, मुखौटा कहिए, हम सभी ने एट सम पॉइंट डाला है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बात तो सच है ना कि हम अपने इमोशंस छुपाने में काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। दिल के अंदर कुछ और चल रहा होता है और चेहरे पर कुछ हुआ ही कहाँ है, सब ठीक तो है। और कभी कभी तो इतनी आदत हो जाती है कि सामने वाले को पता ही कहाँ चलता है कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। बस इसी ख्याल पर आज आफरीन की डायरी से कुछ लफ्ज़ है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। क्या बात है कमाल है ना, शायरी में बार बार लगेगा नहीं कहाँ गया है, पर असल में लग तो सब रहा है, बस दिखाई नहीं जा रहा है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाय कुमार शानू, वेयर इज द लाय? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: The Mentalist Suhani Shah.

अच्छा जानते हो, ऐसा एक वक्त था जब किसी को कोई कहता ना लेट्स कीप इट टच, ऐसा नाम की ना कोई चीज थी ही नहीं, क्योंकि टच ना कभी कभी छूटता ही नहीं था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे सिंपली आफरीन को। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में ले जाते हुए, स्कूल की अगर 20 मिनट की रिसेस भी होती है ना, तो उसमें पूरा दिन की कहानी बताने के लिए ना उतना काफी होता था। एक टिफिन होता था स्कूल में, खाने वाले चार, फिर भी पेट भर जाता था। लड़ाई भी होती थी तो, लेकिन अगली बेल तक बजने तक ना पैचअप भी हो जाता था। और आज फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल्स है, एंड टेक्निकली इफ यू सी ना, वी हैव नेवर बीन मोर कनेक्टेड। फिर भी एक दोस्त से मिलने के लिए कैलेंडर्स मैच करने पड़ते हैं। लेट्स कैच अप सून, बोलते बोलते कभी कभी महीने निकल जाते हैं, और कॉन्वर्सेशंस कभी कभी तो बस सिर्फ रील्स फॉरवर्ड करने तक सिमट जाती है। तो शायद मेरे ख्याल से ये जो दूरियाँ हैं ना, ये किलोमीटर्स में नहीं बढ़ी है, ये जिंदगी में आपस में बढ़ गई है। और जिंदगी हमारी ना जैसे बिजी होते रहेगी, कैलेंडर्स हमारे और कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे, वक्त और कम मिलेगा, बट अपने लोगों के लिए थोड़ी सी जगह तो हम बना ही सकते हैं ना। तो ठीक है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि दूरियां बढ़ रही है तो हम उन्हें थोड़ा कम करते रहेंगे, कभी एक कॉल से, कभी एक मुलाकात से। और मेरी और आपकी ये दूरी, हाँ वो तो मैं रोज सुबह इस माइक के थ्रू कम करते रहूंगी। और माइक तक क्यों सीमित रहना है, सोशल मीडिया पर भी तो मिल सकते हैं। मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक। कल फिर इसी वक्त इसी फ्रीक्वेंसी यानी 89.6 पर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, सायोनारा, और सुनते रहेगा मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।

आज ना मेरा रिलेशनशिप एडवाइस देने का ना बड़ा ही मन कर रहा है। सलाम नमस्ते, मैं हूँ मिर्ची ईशा और आज मैं आपको रिलेशनशिप एडवाइस देने आ चुकी हूँ और इसके साथ साथ वीकेंड की वाइब भी सुनाऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप एडवाइस की बात करें ना तो मेरा बड़ा मन कर रहा था बताने को कि रिलेशनशिप्स जब आप किसी से भी बनाते हैं, किसी से भी अपना रिलेशन बिल्डअप करते हैं ना, तो उसका एक जो महत्वपूर्ण कह लो या इम्पॉर्टेंट कह लो, हिंदी ज़्यादा हो गई मेरी, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना एक रिलेशनशिप में, दैट इज़ योर ओन बिहेवियर। और ये जो एक रिलेशनशिप में एक ये जो फैक्टर है ना, इसको कमाना पड़ता है। सबका जो ध्यान है आपकी तरफ आकर्षित हो, उसको कमाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन कभी भी शक्ल सूरत पे ना जाइए। जो सीरत होती है ना, उसका तो कुछ को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या किसी को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन देखिए, हम इंसान हैं, हम फायदे नुकसान की बात तो ज़रूर करते हैं रिलेशनशिप में। तो अगर फ़ायदे का सौदा होता है ना, तो वो एक इंसान का बिहेवियर होता है कि वो किस तरीके से आसपास के लोगों को ट्रीट कर रहा है, कितना उसका वॉर्मथ है, कितना प्यार है, वो आपको झलकेगा। और अगर आपको लगेगा कि ये इंसान नाटक कर रहा है आपके लिए, तो वो भी आपको आराम से पता लग जाएगा। यू विल फील, हम लोग कहते हैं कि मेरे इंट्यूशन बहुत तेज है, बस ऐसा नहीं है। हर इंसान की इंट्यूशन बहुत तेज होती है, उसको समझ में आ जाता है कि उसके साथ कौन सा इंसान बहुत प्यार से है और कौन सा इंसान नाटक कर रहा है। ये बात तो है भाई। बस इसी के साथ नाटक को आगे बढ़ाते हुए, अपने शो को आगे बढ़ाते हुए, मैं आपको सुनाऊंगी बहुत सारे गाने, उसके साथ बहुत सारे इवेंट्स। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101 इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La viva la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सर ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तो कहाँ करा तो नहीं हो गया
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ुकू
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
1: कुकड़ुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
6: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah live in

इमेजिन कीजिए कि सुबह के 6 बजे जब दोहा प्रॉपरली उठा भी नहीं होता है और आप निकल चुके हैं एक अनफॉरगेटेबल ओशन एडवेंचर पर। डेस्टिनेशन है अल रुवेसी, दोहा से अराउंड 1 घंटे का ड्राइव है और यहाँ से शुरू होती है आपकी व्हेल शार्क स्पॉटिंग विद कूल कतर। जी हाँ, बोट जैसे ही ओपन सी में पहुंचती है तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है क्योंकि सामने आ सकती है ओशन की सबसे जेंटल एंड जायंट वाली शार्क, व्हेल शार्क्स। यस, यू हर्ड दैट राइट यार, व्हेल शार्क्स को आपको स्पॉट करना है तो जाना तो बनता है। और सबसे अमेजिंग पार्ट जो आपको इसके इनके साथ मिलेगा दैट इज कि आप इनके साथ स्विम भी कर सकते हैं एंड एक सेफ और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं एंड मतलब परफेक्ट एक जो पैकेज है ना वो ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की है, 6 घंटे का ये एडवेंचर ट्रिप है, जून से सितंबर के सीजन में ही अवेलेबल होता है हर साल, जहाँ पे आपको स्नैक्स भी मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट्स भी होंगी और सेफ्टी इक्विपमेंट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपके अंदर का भी थोड़ा सा एडवेंचर और समुद्र के साथ एक मैजिकल मेमोरी बनाने का क्रेज जाग रहा है ना, तो बस उसको जगा के रखिए क्योंकि कूल कतर के साथ बुक कीजिए आज ही अपना व्हेल शार्क एडवेंचर और इस वीकेंड एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वैन इट्स हॉट।

कतर को जैसा हम आज की डेट पे देखते हैं वैसा ही कई साल पहले नहीं था। बहुत बड़ा चेंज कतर में देखा गया है। और अगर आप इस चेंज को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कतर ने कहां से शुरू किया और किस तरीके का लाइफस्टाइल था उसका पहले, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे आप बहुत साल पीछे चले जाएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कतर की हिस्ट्री, लाइफ, किस तरीके से ट्रेडिशनल होम्स होते थे, विलेज स्ट्रीट्स होती थी, हेरिटेज सब डिस्प्ले है, किस तरीके से लोग पहले ज़माने में रहते थे, किस तरीके से वो व्हीकल्स जो है उनमें ट्रैवल करते थे। एंड उसके अलावा आपको ये ब्यूटिफुल सी कंट्री की प्राइवेट कलेक्शन आपको मिलेगी सिर्फ एक जगह, दैट इज़ शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम में। एक और बात बता दूं कि हर कॉर्नर जो है ना वहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा जो आपको तो फैसिनेट करेगा ही, लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि वो कतर हिस्ट्री भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जब वो कतर की हिस्ट्री को देखेंगे दे विल फील फैसिनेटेड एंड दे विल फील कि यार मुझे और जानना है कतर के बारे में, वाकई में ऐसा फील होगा। और अगर आप इस म्यूजियम में पहले जा चुके हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर बताइएगा कि आप गए थे बच्चों के साथ और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं और मिर्ची ईशा पे भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था। और उसके बाद या उससे पहले कभी भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अल समरिया इस्टेट है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं पीसफुल सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको अरेबियन ऑरिक्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको पीकॉक्स भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूजियम के पास। एंड अगर आप नहीं गए हैं तो जाइएगा ज़रूर। इस वीकेंड बच्चों को लेके जाइए और इन्जॉय करिए इस वीकेंड को। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

चोरी चोरी टनाना टनाना छुपके छुपके मैं बात कर रही हूँ कि भाई चोरी चोरी छुपके छुपके आपके दिमाग में घुसने आने जा रही है सुहानी शाह द मेंटलिस्ट लाइव इन कतर जल्दी ही आ रही है जो आपके दिमाग पे कब्जा कर लेगी और आपको हाईजैक करके सारे आंसर्स निकाल लेगी। तो भाई अपने आप को थोड़ा सा यू नो क्लियर माइंडेड लेके आना क्योंकि आप देखने वाले हैं एक ऐसे इंसान को जो मेंटलिस्ट तो है ही है लेकिन इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में शुरू कर दी थी मैजिक। यस शी इज द बेस्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस मौके का फायदा उठाइए और आए तो मैं आपको बता दूं 25 सितंबर को आप आ सकते हैं इन्हें देखने QNCC में एंड इसकी टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। जी हाँ आप स्नूनो सिटी या फिर क्यू टिकट्स पे आप अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हैं। तो भाई ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बिकॉज कतर कैलेंडर प्रेजेंट्स सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे एसोसिएट पार्टनर डेयरी क्वीन एंड पापा जॉन्स रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर एंड पार्टनर्ड बाय डाइसू जापान एंड होम्सारस रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू इवेंट पार्टनर क्यूब and media partner rehab media production partner symphony branding partner brand arts marketing partner q squad and ticketing partner snowno city। to bhai der kis baat ki hai jaldi se ticket book karwaiye aur enjoy kariye ek amazing si sham aur ek amazing tarike se bas bane rahiye mere saath for more updates stay tuned with us only on 89.6 mirchi 1 & 7।

0: कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
1: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

नहीं, दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलती है जब वीकेंड की बात आती है और कुछ प्लान बन रहा होता है और बजट बिल्कुल जीरो होता है, तो भाई आपके लिए एक सोल्यूशन लाई हूँ। तो चलिए एक सिटी की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर और एक ऐसी पीसफुल जगह जहाँ पे नेचर खुद आपको वेलकम कर रहा है। इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली साथ में है, ओपन ग्रीन स्पेस है, आसपास बर्ड्स की आवाज आ रही है, ओए होए एनिमल्स और टर्टल्स फ्रीली घूम रहे हैं, और बच्चों के पास ना एक खुल के खेलने का स्पेस है। भाई एक्सप्लोर आराम से कर पाएंगे बच्चे, चाहे वो एनिमल्स को कर रहे हो, चाहे नेचर को कर रहे हो, सब कुछ। और ये हिडन जेम ना आपको मिलेगा अलशुआ रिजर्व में, अलखोर में। और ये सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है इसकी, की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का या मॉल या रेस्टोरेंट से थोड़ा बोर हो गए ना, थोड़ा ब्रेक चाहिए वहाँ से, तो नेचर के साथ एक पीसफुल डे एंजॉय करना है, तो अलशुआ रिजर्व जाइए एंड स्पॉट दिस ब्यूटिफुल प्लेस विद योर फैमिली एंड निकल पड़िए एक बजट फ्रेंडली एडवेंचर पर। और फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिशिवन इट्स हार्ट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La virpa, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
4: किससे बात करनी है?
3: भैया
4: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
3: पागल
4: पता नहीं
3: कौन बोल रहा
4: है।
5: इको आ रहा है, इको।
3: हेलो।
4: जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
3: भैया
4: नंबर चेक के मिला?
3: हेलो। भैया
4: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है,
3: है? भैया क्या?
4: अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
3: पागल
4: कहीं का?
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि है।
5: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
5: आप खत्म कर दो यार।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: This show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो और सामने कोई स्ट्रेंजर खड़ा है और वो आपको कुछ बातें करता है आपसे और आपको ऑब्जर्व करता है और फिर अचानक बोलता है कि आपके माइंड में इस समय जो नाम चल रहा है वो है ये। एंड आप सोचोगे कि वेट, इसने मेरा माइंड रीड कैसे कर लिया भाई? बस यही से शुरू होता है मेंटलिज्म की फैसिनेटिंग दुनिया। मेंटलिज्म बेसिकली एक ऐसी परफॉर्मेंस आर्ट है जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे, मेमोरी और सजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, वो आपके थॉट्स को पढ़ सकते हैं और इसी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ ना, वो है सुहानी शाह का। जी हाँ, सुहानी शाह जो आ रही हैं आपकी कतर में लाइव, आप उनको देखेंगे परफॉर्म करते हुए 25th of September को। मार्क योर डेट्स बिकॉज ये मौका ना खोने वाला नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह ने बहुत कम उम्र में ना मैजिक की दुनिया में ना कदम रखा और धीरे धीरे मैजिक से आगे बढ़कर मेंटलिज्म की और अपनी पहचान बनाई है। उनकी परफॉर्मेंसेस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि हमें सिर्फ सरप्राइज नहीं करती है वो, बल्कि हमें अपने ही माइंड और बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। यार वाकई में, अगली बार अगर कोई बोले ना आई कैन रीड योर माइंड, तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दिमाग में कैसे घुस गया, बल्कि सवाल ये होना चाहिए मैंने अपने माइंड के बारे में ऐसा क्या रिवील कर दिया जो मुझे खुद पता ही नहीं चला। देखिए, सोचना समझने की बात है। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

फतेह। ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को गाया गया है बाय श्रिया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी संजू। लेकिन ये गाना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं कतर में अपना लाइसेंस का एग्जाम देने जा रही थी तो थ्रू आउट दैट जर्नी जब तक मैं लाइसेंस के टेस्ट के लिए बैठी नहीं तब तक मैं ये गाना सुनती रही और सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी। एंड आई वाज डैम श्योर और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया। बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है। एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज़ फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय कर एहसान लॉय एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी। ये बहुत खूबसूरत मूवी और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन। तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ। ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कटर अकाउंट पे बताइएगा या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

देखिए ये घड़ी मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि समय खत्म हो चुका है ईशा, अब तेरे जाने का समय आ चुका है। और इसी बात पे ना थोड़ी सी लाइनें आपको सुना दूं। मुलाकात चाहे छोटी सी हो, मुलाकात चाहे छोटी सी हो, यादें रह जाती हैं, बातें खत्म हो जाएं पर स्माइल्स रह जाती हैं। तो आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीकेंड वीकेंड वाइब्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ गाना। रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
3: दिल ने कहा चुपके से ये क्या हुआ,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ, पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे। कैसे करूँ? प्लीज हेल्प करो ना।
1: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर अस्ताना के पास जाना।
2: साले का खोपड़ी तोड़।

89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

देखो एक ही बात कहना चाहूंगी, ये जो सर्कल है ना, इसे बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करना, वरना जिंदगी भर बस चक्कर ही लगाते रह जाओगे। मिर्ची अंशु। वो कहते हैं ना कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को डिफाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके जैसे बनने लगते हैं। इसीलिए तो जिन लोगों जैसा बनना चाहो, दोस्त यारी भी जो है बस उसी हिसाब से किया करो। या लेकिन सच कहूं, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ हंसने गाने का नाम नहीं यार, ये तो वो रिश्ता है जो कहीं ना कहीं हमें और बेहतर बना सके। दोस्त वो हो जो आपकी कामयाबी से खुश हो, आपकी उड़ान को और ऊंचा देखना चाहे, दुनिया के सामने आपकी ढाल बने लेकिन जब बात आपकी हो ना तो आपके सामने आपका आईना बने। लेकिन हाँ, दोस्त वो भी हो जो उसके नंबर आपसे कम आने पर कभी ना कभी आपसे खुद नाराज हो जाए। वेल, दोस्ती जो है ना जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है यार, एंड इस पे मैंने कुछ लिखा है, सुनाती हूँ। मेरी जीत में जो मुझसे ज्यादा मुस्कुराए, मेरी भूल पे जो मुझे आईना दिखाए, दुनिया से लड़ जाए जो मेरे नाम पर, अरे दोस्त वही जो मुझे मुझसे बेहतर बनाए। एक बात बताओ, किस दोस्त का नाम याद आया ये सुनकर? ऐसी कोई दोस्ती है जिंदगी में? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची आंशु। स्टेडियो टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से, बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर। सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर
3: मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
1: लीजिए
2: सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoono. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah, live.

0: फिंगर टिप, ये टर्म आपने सब सुना होगा, हमने तो इसे लाइव एक्सपीरियंस किया है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे भैया कौन जाएगा वहाँ, इतनी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, इतने देर खड़ा होना पड़ता है। अब जो है ना, ये सारे सवाल सारे झंझट हमारी जिंदगी से काफी हद तक दूर हो चुके हैं। फिंगर टिप्स में सर्विसेज जो हैं वो डेफिनेटली अवेलेबल है। पर अगर कतर में कोई चीज है जिसने हमारी आंखों के सामने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो है डिजिटाइजेशन। मतलब लिटरली न जाने कितनी गवर्नमेंट सर्विसेज अब हमारी फिंगर टिप्स में अवेलेबल हैं। और इसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अगर सबसे यूजफुल एग्जांपल कोई है तो वो है मेट्राश। एक ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां अब इसके लिए कहां जाना पड़ेगा वाला सवाल जो है ना, घर में कई बार आता ही नहीं। जरा सोचिए, अगर मैं माइनर ट्रैफिक एक्सीडेंट रिपोर्ट करने की बात करूं, या व्हीकल ओनरशिप को ट्रांसफर करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस आपका रिन्यू करना हो, कहां जाना है? अरे मेट्राश में जाना है। फैमिली विजिट वीजा हो, फैमिली रेसिडेंस के लिए अप्लाई करना हो, रिटर्न वीजा रिक्वेस्ट करनी हो, या वीजा एप्लीकेशन या एक्सटेंशन को ट्रैक करना हो, अब इसके लिए किसी को फोन लगाकर कोई लॉबिंग की जरूरत नहीं, मेट्राश है ना। इनफैक्ट अगर आपकी गाड़ी की बात करूं, जिंदगी नामक गाड़ी तो अच्छे से चल रही है, लेकिन आपकी व्हीकल रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स चाहिए, किसी फैमिली मेंबर या दूसरे पर्सन को ऑथराइज करना है, या अपने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ई वॉलेट में रखना है, ये सारा काम मेट्राश आपकी जिंदगी में फिंगर टिप्स में करता है। तो एक बार याद दिलाया कि अगर बेसिक सिर्फ अपनी कतर आईडी निकालने के लिए आज तक मेट्राश को यूज करते आए हो ना, तो जरा एक्सप्लोर करो। बैठे बिठाए काफी सारे काम जो है ना तुम्हारे बच ही जाएंगे, घर पे किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: देखो तुम खुद भी आना एंड साथ अपनी घर वाली को भी जरूर लेकर आना। पक्की बात है एक पंत दो काज जो है ना यहाँ पे हो ही जाना है।
1: मिर्ची अंशु।
0: जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बस यही है कि वाइफ्स को अक्सर लगता है कि उनके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानती हैं एंड हस्बैंड्स को बस यही लगता है कि काश तुम समझ पाती कि मेरे दिमाग में चल रहा है तो क्या ही चल रहा है। अब दोनों के मसले हैं ना ये हल करने का मेरे पास एक तरीका है एंड 101% है। तारीख याद रखो 25th of September। जगह भी बता रही हूँ कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। भाई साहब एक ऐसी बंदी को मैं लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मैरिज की काउंसलिंग भी कर देगी एंड किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सच सच बताकर तुम्हारी जिंदगी में राहत और सुकून जरूर लेकर आएगी। जब दुनिया की सबसे सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की मैं बात करूं, मैजिशियन की बात करूं, तो उसमें नाम आता है सुहानी शाह का। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक पंत दो काज जो है ना वो हो ही जाना है। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ ही दिमाग की सारी बातें बाहर आ ही जाएंगी। फटाफट से जाएं क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट या स्नोनू सिटी पर एंड अपनी टिकट्स जो है वो बुक करके आएं। एक ऐसा इवेंट जिसे आप किसी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। कतर की हिस्ट्री में पहली बार आपके इंतजार में। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: यार देखो एक ही बात बोलूंगी कि जिस दिन तुम्हें अवार्ड मिल जाए ना दोस्त, उस दिन ये ना भूलना कि इस अवार्ड के पीछे तुम्हारा सिर्फ अच्छा काम नहीं बल्कि मेरा रिमाइंडर भी था।
1: मिर्ची अंशु
0: ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के अलावा हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई छाप छोड़ ही गए हैं, क्यों ना? आपने जब हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां बिखेरी हैं तो आपके अच्छे काम का रिकग्निशन हम भी जरा कर ही लें। अरे नाना, ये मेरी जुबान ही सिर्फ किसी और की कहानी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कतर टूरिज्म अवार्ड्स 2026। एब्सोल्युटली जितने भी अच्छे काम आपने किए हैं कतर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए, ट्रैवल को काफी फीजिबल बनाने के लिए या कतर की खूबसूरत कहानी देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अब उस काम को हाईलाइट करने की बारी आ ही चुकी है। कतर टूरिज्म अवार्ड्स में आपके सबमिशन की फाइनल डेट है 15th of September। उसके बाद जो है कोई भी एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो जाइए वेबसाइट एक्सप्लोर करिए एंड जस्ट जिस डोमेन में आप फिट बैठते हैं अपनी एंट्री जो है पक्का लगा ही दीजिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर अवार्ड्स जो है आपके खाते में आने वाला है, जरूर आने वाला है। जब मिलेगा मिलके सेलिब्रेट करेंगे। आपकी मेहनत और मेरा रिमाइंडर दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं यार, दोस्त रिटायरमेंट प्लानिंग में लगे हैं और मेरा तो अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत बुरा लगता है, क्या करूं?
1: तू एक काम कर, 22 साल की उम्र वाले दोस्त बना, फिर दिक्कत ही नहीं होगी, समझे?

0: बात कहना चाहूंगी कि अच्छे गोल्ड रेट्स की बहार है और आने वाले दिनों में त्योहार है, तो क्यों ना जरा सोने की खरीदी हो ही जाए। वैसे अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे तो अल फरदान एक्सचेंज में गोल्ड रेट्स क्या कहते हैं ये बात हम आप तक पहुंचाई दें। पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 584। अगर 5 ग्राम्स की बात करूं सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 2737। साथ ही अगर 10 ग्राम्स को आप देखने की कोशिश करें सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 5405। 1 ounce is priced at Qatari riyals 16707। साथ ही अगर 10 तोले की बात करें तो आज इसका रेट है Qatari riyal 62038। बढ़िया है जी, घर में सोने की बहार लाएं एंड उसके बाद जो ज्वेलरी बनाई जाएगी मल बांट के पहनेंगे। क्या कहती पब्लिक, स्टे ट्यून्ड टू वर्ची।
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars and earn Qatar Airways Avios today. Visit our branches or download the app now.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: हैंड मिलता है,
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे के कभी? और इसमें
2: क्या बकवास कर रहा है?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते हैं पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: The show was absolutely amazing.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snoono. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: यार इस वक्त ना मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो माना कि ये जरूरी है, लेकिन एक दूसरी बात और भी ज्यादा जरूरी है। मुझे ना इस वक्त अगर कोई दिन याद आते हैं तो वो है मेरे बचपन के, अपने स्कूल के दिन। क्या कमाल के दिन थे यार। स्कूल में पढ़ाई भी की, डांट भी खाए, लेकिन उससे ज्यादा मस्ती की, मजे किए। स्कूल से घर आते थे, मम्मी की डांट खाते थे, एंड सीधा अगर कहीं भागना है तो ट्यूशन। ट्यूशन में पढ़ाई, फन, मस्ती, सब कुछ। लेकिन लौट के आने के बाद मजाल कोई कह सके कि फिर से पढ़ने बैठो? भाई बैग एक कोने में रखा, एंड सीधा कहीं गए तो अपने दोस्तों की पलटन के साथ, एंड उसके बाद घर की तरफ लौट कर तभी आना है जब पापा की बैट जो है ना हमें बुलाने आ जाए। क्या दिन थे यार। जब आज की जेनरेशन इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है जमाना एंड दौर कितना कंपैरेटिव हो चुका है। कितना लोड है यार, पढ़ना भी है, ये एक्टिविटी भी करना है, ये भी सीखना है, AI एंड व्हाट नॉट। देखो माना कि दौर जो है बदल गया है, लेकिन बचपन और बचपना वो तो हर एक शख्स की जिंदगी में एक ही बार आता है ना यार। जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है ना, एक ही बात कहना चाहूंगी कि बच्चों की जिंदगी को उनके करियर के चलते संवारना है, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये बात नहीं भूलना है यार कि कहीं उनका बचपना ना खो जाए। उन्हें खेलने दीजिए, अपने बचपन के दिनों को दिल से जीने दीजिए जैसे हमने जिया है। अपनी मंजिल तक पहुंच गए ना तो पढ़ाना लिखाना जरूरी है, लेकिन बचपन को बचपन रहने देना और भी ज्यादा जरूरी है। सोचिएगा जरूर। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: देखो, आंखों से जादू के बारे में तो मैंने सुना था, ये बातों से जादू ये कब से होने लगा? मिर्ची अंशु यार, सच कह रही हूँ, ये बात जो है ना 101% तय है कि ये गाना इसी के लिए बना है।
1: जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन।
0: भाई साहब, इतना बता दूं, इसकी नजर जो है ये जरूर एक जादूगरनी की है, बदन का मुझे पता नहीं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त अगर मैं किसी की बात कर रही हूँ तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन यानी कि सुहानी शाह। भाई, अपनी नजरों से जिस तरह का जादू करती है, अपनी बातों में फंसा कर जिस तरह से आपका जादू बाहर निकालती है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपको आपसे ज्यादा समझती है। जितने राज आपके अंदर छुपे हैं ना, उसे बाहर निकालना बहुत अच्छी तरह से जानती। वेल, सच कह रही हूँ, ऐसे इवेंट्स के बारे में हम जब जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है भाई ये कैसे होता होगा, क्या ही होता होगा। तो चलिए, इस मैजिक को लाइव विटनेस करने का वक्त जो है वो आ चला है। सुहानी शाह लाइव इन कतर, 25th of September एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे आप किसी हाल मिस नहीं करना चाहेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए प्लैटिनम लिस्ट पर या तो फिर क्यू टिकट्स स्नूनू सिटी, अपनी टिकट्स को फटाफट से जाकर बुक करें। इस वक्त भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे। एंड सुहानी का इवेंट, भाई ये ना देखा तो फिर क्या ही देखा, जाओ जल्दी टिकट्स बुक करो। बाकी आपकी बातें जो है सुहानी से हम निकलवाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात करें, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: इसने कहा कि इस काम को पूरा करने में पूरे एक हफ्ते लगेंगे।
1: मिर्ची अंशु
0: क्या कभी नोटिस किया है कि अगर किसी काम को पूरा करने के लिए एक हफ्ता मिले तो संभव एक हफ्ता लग ही जाता है, लेकिन अगर कोई कहे भाई एक घंटे में काम जो है ना पूरा हो जाना चाहिए, तो अचानक से फोकस भी आता है, स्पीड भी आती है और काम हो ही जाता है। अरे नाना, ये तुम्हारे पति की गलती नहीं और ना ही तुम्हारी फितरत है, इससे तो हम एक लॉ कहते हैं, नाम है पार्किंसंस लॉ। 1955 में ब्रिटिश राइटर एंड हिस्टोरियन नॉर्थ कोट पार्किंसन ने इसे डिवाइस किया, एंड इसका आइडिया बड़ा ही सिंपल, काम उतना ही फैलता है जितना टाइम आप उसे देते हैं। यानी कि अगर वार्डरोब साफ करने के लिए फ्राइडे रखा है तो पूरा फ्राइडे लग ही जाएगा, लेकिन अगर घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, डेडलाइन एक घंटे की है, तो वार्डरोब क्या, जरा देखो पूरा घर कैसे साफ होता है। तो शायद हर बार हमें ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, कभी कभी हमें बस एक अच्छी सी डरावनी सी वार्निंग देती हुई डेडलाइन की जरूरत है। आजमा के देखिए घर पे और अपनी जिंदगी में भी। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन। एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे। कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था। शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है। यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है। और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है। कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है। इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी।
4: नंबर 20

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बना हूँ कि सिर्फ एक्शन ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है। मैं यार करूंगा, आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक अ रिस्क।
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं, और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नायर ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी कौन
2: हेलो किससे
1: बात करनी है
2: भैया किससे बात करनी है
1: किससे बात करनी है
2: भैया नंबर चेक करके
1: नंबर चेक करके दोबारा मिला
2: पागल
1: पता नहीं
2: कौन बोल रहा
1: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था
3: इको आ रहा है इको
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ
2: भैया
1: नंबर चेक के मिला
2: हेलो
1: हेलो
2: भैया
1: क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है पे फोन करे जा रहा है फोन करे जा रहा है
2: भैया
1: अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास
2: पागल
1: कहीं का
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका आप बुरा मत मानिएगा प्लीज
2: रवि
3: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ अब एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें एको नहीं आएगी
2: कुकड़ू को
3: भाई कुकड़ू बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई
3: आप खत्म कर दो यार
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
6: हेलो कतार आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानो, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी, और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, गर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद, कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।

एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट चलते हैं तो नॉस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम। Here is आँख मारे फ्रॉम सिम्बा। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
8: नंबर 15।

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लवर वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गेव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना ड्रम वन। नंबर 14।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
4: दाल चावल और अचार ना हो आम का, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
3: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: नंबर 13।

0: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल फोर, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
1: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं डिजर्व करता था। मुझे बड़ी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो तब हम 3 दिन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया, मगर यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
0: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर ऊंचा लंबा कद, बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान। ये गाना है आइकॉनिक, दिस वन इज छैया छैया फ्रॉम दिल से। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
1: मेरी ऑफिस में बहुत बकवास चाय मिलती है, क्या करूं?
2: अगर ऐसा है तो टपरी पे काम करना स्टार्ट कर, उधर तेरे को चाय मस्त मिलेगी।
3: खोपड़ी तोड़ साले का।

मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर्स टीवी पे जाते थे और फिर ओटीटी पर, लेकिन मिर्जापुर ने फ्लो ही उल्टा कर दिया। डिजिटल स्क्रीन्स पर जन्म लेने वाली दुनिया ने मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर

0: चल लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुकी है। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया, एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है विच इज ऑन नंबर 8, अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना।
1: नंबर 8।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बाना उसका बाना सबका बाना. मुर्गा मुर्गा. नवीन वाला मुर्गा. Mirchi मुर्गा.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको. अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखां दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ वही
2: बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें
3: नहीं,
2: कर
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई बपौती
3: है. तमीज सीखिए.
2: नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह,

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, वीएफएक्स होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना, और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, उसमें उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। There have been songs like चल वहां जाते एंड सोच ना सके जो अरमान ने गाए, एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। Then there is a बेस अबरिया फ्रॉम MS धोनी जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। सो दीज आर क्रिएटिव कॉल्स। और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है। अपने भाई से प्यार करना एक बात है, लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी, और इस गाने की किस्मत देखिए, अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया, और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए, लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन।
2: नंबर 5 में

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 4।

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस फिल्म के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
4: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
3: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 2.

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाए, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। Still reigning at number one, this is तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। So until the next time I meet you here on the Mirchi Top 20, this is Sireen, over and out.
1: Sireen ke saath, only on Mirchi, it's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline?
3: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
2: बालकनी का दरवाजा खुला रखता हूँ तो कबूतर अंदर आ जाते हैं और पूरा रूम गंदा कर देते हैं, क्या करूँ?
3: अरे तो कबूतरों को बोलो कि चप्पल बाहर निकाल कर आए।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट।
1: एक कोने में तो बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी। आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जम ली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी। एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मैनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।

आ गया आ गया आ गया अपने सपनों को सच करने का वक्त आ गया। 89.6 मिर्ची 1 पर मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट एंड इस्लामिक अफेयर्स ने अनाउंस कर दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स जो हज 2027 का हिस्सा बनना चाहते हैं, साल 2027 में हज करने जाना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुला है। यस, सितंबर 20th संडे से यह शुरू होगा और अक्टूबर 20th ऑलमोस्ट एक महीना हज पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस, रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स दोनों के लिए खुल जाएगा 20th of September टू अक्टूबर 20th, वो टाइम जब हम ये मानते हैं कि ऊपर वाले की इबादत में टाइम निकालेंगे और हज पर जाकर हाजी बनेंगे। लेकिन इस बार का कोटा 4400 पिलग्रिम्स का है, यानी कि हज यात्री सिर्फ 4400 हैं और आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी पहला स्टेप है जो एप्लीकेंट्स को देना ही देना है। एंड इसके अलावा आप हेल्थ सेंटर्स पर जाकर मेडिकल असेसमेंट कराकर जो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड आएगा उसमें से आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो जाकर सबमिट करनी है। एंड याद रखिए, रेसिडेंट्स एंड जीसीसी सिटीजंस कम से कम 45 ईयर ओल्ड होने चाहिए एंड इससे पहले कभी हज परफॉर्म करने नहीं गए हो। और तो और, अगर आप कंटिन्यूअस रेसिडेंस हैं इन कतर फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स तो एक और कंपेनियन आपके साथ जरूर ऐड हो जाएगा। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता लग जाएगा, लेकिन दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास वो मौका है जब आप ऊपर वाले की इबादत के लिए जाएंगे एंड हम सबके भी दुआएं कर कर आएंगे। चलिए जी, इस उम्मीद से कि आप अगली हज यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और मसमोलो गौरव ने अपनी तरफ से थोड़ा नेकी का काम किया, आगे बढ़ते हैं। दुआ में याद रखिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलो।
2: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया।
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का।
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट रहे हो यार, मजाक कर रहा हो क्या? कर रहा हूँ
2: मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
3: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
2: लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

नहीं नहीं आज तो सर आए नहीं, आप ऐसा करिए कल अपना लेके आइए वाला पेपर, देखते हैं क्या हो सकता है। और इस चक्कर में कल परसों करते करते आपने सरकारी बिल्डिंगों में न जाने अपनी कितनी चप्पल घिसवा दी होगी। ऐसा बहुत बार होता था कि आपका छोटा सा काम कम से कम 10-15 बार बाबू के चक्कर लगाने के बाद होता था, लेकिन डिजिटल दुनिया में चीजें बदल रही है और हमारे कतर में तो ये अब बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही है। एंड एकदम काम की खबर हम आपके पास लेकर आए, अगर आप पेट लवर हैं या फिर एनिमल बिजनेस से जुड़े हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने आपके लिए चीजें और आसान कर दी है। 1-2 नई पूरी 38 नई सर्विसेज को अपने उन ऐप में शामिल कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने। हाँ जी, अब इससे क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है, सब कुछ डिजिटल और सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप बाहर से कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, फाल्कन्स या फिर रेसिंग कैमल्स लाना चाहते हैं तो उनका इंपोर्ट परमिट अब आपको उन ऐप पे मिल जाएगा। इतने नहीं, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक टेबल एग्स, ऑर्नामेंटल फिश, वाइल्ड बर्ड्स, इन सब का परमिट भी आपको अब एक क्लिक पर मिल जाने वाला है। और सिर्फ इंपोर्ट नहीं सर, एक्सपोर्ट के लिए भी जो वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता ना, वो भी अब आपको इसी उन ऐप पे मिल जाएगा। पहले जिसके लिए आप ऑफिसेस के चक्कर लगाते थे, इंतजार करते थे कि कोई बाबू साहब आए हमारा काम कर दें, अब वही काम आपके फोन पर एक बार में घर बैठे बैठे हो जाएगा और जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाए आपका काम डन। तो अगर अब आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए तो ऊन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ना इसमें एक और बड़ा फायदा होता है। अगर आपको कतर के किसी भी पार्क में जाना है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी फीस लेती है, वो हो सकता है आप पार्क्स में लगे उस बारबेक्यू एरिया को भी बुक कर सकते हैं इसी ओन ऐप के जरिए। तो जरूर डाउनलोड कीजिए एंड डिजिटलाइज होती इस दुनिया का हिस्सा बन जाइए, जहां एक क्लिक पर सारा काम होता है, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

अरे मामा बखलावा कुनाफा बटवाओ, ये तो खुशखबरी है। हबीबी गुल्ला गुल्ला ध्यान से सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अर्ज कर दिया है और हमसे कहा है कि एक्सटेंड करना चाहते हैं अगर आप ऑन अराइवल वीजा, रिन्यू करना चाहते हैं अगर आप ऑन अराइवल वीजा, तो अब आप इसके लिए बिल्कुल जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट या सर्विस सेंटर्स पे मत जाइए, ये सब वेबसाइट पे हो जाएगा। यस, मिनिस्ट्री ने कहा है कि वीजा एक्सटेंशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा, कुछ MOI की वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है एंड उसके बाद आपका आसानी से काम हो जाएगा एंड आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपको रिन्यू कराना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए MOI.gov.qa पे जाना है, उसके बाद इंक्वायरीज को सेलेक्ट करना है, फिर वीजा सर्विसेज को और वीजा एक्सटेंशन फॉलोड बाय इंक्वायरी एंड एक्सटेंशन, बस ये प्रोसेस और आपका काम पूरा। यस, इसमें आपको जो डिटेल्स भरनी है वो ध्यान से भरिएगा एंड इतना समझ लीजिए कि जिसके लिए पहले चक्कर लगाएंग लगाएंग होता था वो अब आपके लिए ऑनलाइन बैठे बैठे काम हो जाएगा एंड जो भी फीस है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली पे कर देनी है एंड सारा कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस आप इंतजार कीजिए और जैसे ही आपका वीजा रिन्यू हो जाएगा या फिर एक्सटेंड हो जाएगा आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ी आसानी की बात। हमारे वहां सबसे ज्यादा खुश इस बात से आफरीन होगी, मतलब आफरीन का ना अक्सर ऐसा होता है कि उसके गेस्ट उसके रिश्तेदार आते रहते हैं तो वो बस हर बार चक्कर लगा रही थी एक्सटेंशन कराने जा रही कराने जा रही हूँ, अब बैठे बैठे काम हो जाएगा। चलो जी, ये बधाई वाली बात तो है सर कि अब हमारे अभी जो रिलेटिव आ रहा है अगर ज्यादा दिन रोकना है तो रोक पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुनाफा खिलवाओ इस खबर पे तो कोई हमें मिर्ची छोट

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

अगर आप ये कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से दुनिया के आयरन मैन मेरे लिए आप ही हैं। अरे यार, मैं बात कर रहा हूँ उस वर्ल्ड ट्रायथलन चैंपियनशिप की, जो एक बार फिर से लगातार दूसरे साल हमारे कतर में होने जा रही है। यस, कतर T100 ट्रायथलन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल दिसंबर 10 टू 12 हमारे कतर में होने जा रहा है। कह सकते हैं एक दमदार स्पोर्टिंग इवेंट जो दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स को हमारे यहां कतर में लेकर आता है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हमारे कतर में होगा और कतर T100 ट्रायथलन के लिए इस बार एक बड़ा सरप्राइज है। यस, सरप्राइज ये है कि हम और आप भी अब अपनी टीम बनाकर 100 किलोमीटर या स्प्रिंट डिस्टेंस में कम्पीट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इसका बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब है। पहले 2 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होगी इन अरेबियन गल्फ, उसके बाद 80 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी होगी एंड लास्ट 18 किलोमीटर रन करकर लुसेल प्लाजा बॉलवर्ड में आपको फिनिश करना होगा। कुल मिलाकर दुनिया भर से 5000 से भी ज्यादा एथलीट लास्ट टाइम आए थे। इस बार क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। वैसे हम कहते हैं ये तो T100 ट्रायथलन है, लेकिन अगर खाने पीने की 3 कोर्स की कोई रेस हो तो बताइए, हम उसमें इतना जबरदस्त तरीके से खाएंगे पिएंगे कि टॉप 5 में तो हम आ ही जाएंगे और क्या पता सिल्वर या ब्रॉन्ज भी आ जाए। नहीं, इतना भी नहीं खा सकते कि गोल्ड जीत पाए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं यार, दोस्त रिटायरमेंट प्लानिंग में लगे हैं और मेरा तो अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत बुरा लगता है, क्या करूं?
1: तू एक काम कर, 22 साल की उम्र वाले दोस्त बना, फिर दिक्कत ही नहीं होगी, समझे?

0: सल्तनत।
1: चाय में जितनी चीनी चाय उतनी मीठी, लेकिन स्वीटेन ड्रिंक्स में जितना स्वीटनर उतना टैक्स। जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। पिछले दिनों हमने सुना था कि जल्द ही यह सिस्टम आएगा जहां पर स्वीटेन ड्रिंक्स में जितना स्वीटनर होगा उसके हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। और अब जनरल टैक्स अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2026 स्वीटेन ड्रिंक्स की रजिस्ट्रेशन और लैब एनालिसिस सर्टिफिकेट का अप्रूवल फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक होगा। यस, अब धरिबा प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ अप्रूव लैब्स के साथ इंटीग्रेशन होगा। टैक्स पेयर एप्लीकेशन सबमिट करके एक्रेडिटेड लैब में सैंपल भेजेंगे, वहां पर टेस्टिंग के बाद लैब सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिक धरिबा प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे इन कंपनीज को अब मैनुअल रिपोर्ट्स अटैच करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ जी, लेकिन ड्रिंक्स में शुगर और स्वीटनर्स की क्वांटिटी के हिसाब से एक्साइज टैक्स डिसाइड हो जाएगा। और फिर मार्केट डिलीवरी होते ही लोग कहेंगे, अरे यार ये तो पहले इतनी पीती थी इसका दाम बढ़ गया, तो समझ जाना कि उसमें ज्यादा चीनी थी इसलिए दाम बढ़ गया। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah, live.

शाम गुलाबी होगी और आपका दिमाग हरा हो जाएगा। अरे जब सुहानी को आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये पता लग जाएगा। दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर। 25 सितंबर को QNCC में शाम 5 बजे से लगने वाली है सुहानी के इस मेंटल वाले बेहतरीन शो की महफिल, जहां पर वो माइंड रीड करेंगी, अपने इल्यूजन से ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगे कि सब कुछ असल दुनिया का ही लगेगा। वेल, इसके लिए बस आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है एंड एस सिटी स्नूनू पर इस वक्त 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है, यानी कि आप गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर, VIP कैटेगरी, VVIP कैटेगरी की टिकट बुक भी कर रहे हो ना, तो भी याद रखो आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिलेगा। मौके का फायदा उठाओ एंड इस वीकेंड अपनी प्लानिंग सेट कर लो, क्योंकि ना सुहानी के साथ साथ डांस म्यूजिक डुओ का तड़का लगने वाला है, जहां पर सिंगर चरण एंड डांसर अशी हमारे कतर में आ रहे हैं एंड वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो एक तरफ जहां संगीत, म्यूजिक, डांस, दूसरी तरफ सुहानी का मेंटलिस्ट शो, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे 25th of September एट QNCC। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, प्रेजेंटेड बाय iPay एंड ये एक ऐसी शाम होगी जो हमें हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि कुछ अलग हटके आउट ऑफ बॉक्स सोचा मिर्ची ने। अब बस आप ना साथ दो, फटाफट टिकट्स बुक करो एंड मिर्ची को थैंक यू कहो जो हर समय कुछ ना कुछ आपके लिए करता ही रहता है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: 9.6 बिरजीवन पर मैं हूँ आरजे मस्तवाला गौरव, और अगर पैसे पास में रखे हैं तो खर्चे मत करो, सेफ इन्वेस्टमेंट करो, एंड द सेफेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज गोल्ड। लेकर आ गया मस्तवाला गौरव आपके पास अलफरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स।
1: गोल्ड अपडेट।
0: अलफरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स, टैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 584 कतारी रियाल, टैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2737 कतारी रियाल, टैम्प 10 ग्राम 5405 कतारी रियाल, टैम्प 1 आउंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16707 कतारी रियाल, एंड टैम्प 10 तोला गोल्ड बार इट विल कॉस्ट यू 62038 कतारी रियाल। और मैं कहता हूं जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम वही चीज लें जिसकी प्योरिटी की कहीं ना कहीं अश्योरेंस हो, और वही भरोसा आपको देते हैं अलफरदान एक्सचेंज, जहां मिलती है आपको सर्टिफाइड स्विट्जरलैंड टैम के गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार्स 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
1: and earn Qatar Airways Avios today.
0: Visit our branches or download the app now.
2: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
5: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: रेडी
8: रेडी
7: टू लर्न
8: यस
7: To play.
8: Absolutely.
7: To grow.
8: With Maserati.
9: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
8: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
9: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
10: The show was absolutely amazing.
11: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

अरे ना गिन नहीं, गिन गिन, क्योंकि एक एक दिन निकलता जा रहा है मेरे दोस्त, अब तो टिकट ले लो। आज 10th ऑफ सितंबर और इसके बाद बचेंगे 15 दिन, और 15वें दिन सुहानी शाह हमारे कतर में होंगी, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पर मिर्ची आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मेंटल मैथमेटिक्स का मैजिक जो इल्यूजन की दुनिया में भी आपको रियलिटी की फीलिंग देने वाला है। एंड इसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, क्योंकि सुहानी शाह हमारे कतर में आ रही है, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह ऑन 25th ऑफ सितंबर एट QNCC, ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे, एंड ढेर सारे पार्टनर्स जो इसमें हमारा साथ दे रहे हैं उनको भी दिल से शुक्रिया। एंड एक चीज जरूर कहूंगा, ये कैसी शाम होगी जहां पर म्यूजिक एंड डांस भी होगा, क्योंकि हमारी सुहानी से पहले स्टेज को धमाल के म्यूजिक के साथ अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद लगाने आसी एंड चरण भी होंगे। वेल, इतना ही कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके टिकट्स बुक कर लो, क्योंकि अर्ली बर्ड प्राइजेस अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, किस दिन टाटा बाय कर दें ये मुझे नहीं पता। एंड जल्दी अपनी टिकट्स बुक करो, एस सिटी स्नोनू पर आपको 30 कतारी रियल का कैशबैक मिल रहा है, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है अगर आप क्यू टिकट्स पे बुक कर रहे हो या फिर प्लेटिनम लिस्ट पे जा रहे हो। सारी जगहों पर अर्ली बर्ड प्राइजेस स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं, जाओ कपल में टिकट्स खरीदो, और मैं कहता हूँ भर भर के खरीदो और सारे दोस्तों के साथ जाओ, क्या पता आप ही की टोली सुहानी की कैद में आए और आप सबके दिमाग को वो पड़ जाए। 89.6 मिर्ची, मिलेंगे सैटरडे को फिर से शाम शानदार में, तब तक ले हबीबी मा सलामा, मिर्ची इट्स हॉट।

मटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमों बीबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
4: दिल ने कहा चुपके से ये क्या हुआ,

0: प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ, पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे। कैसे करूँ? प्लीज हेल्प करो ना।
1: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर रस्ताना के पास जाना।
2: साले का खोपड़ी तोड़, साले का।

0: ट्रेंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक, यानी कि गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: सारे कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में.

उस आसमान में जहाँ वो बिलोंग करती है और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है। नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है। रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है। हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ, कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। और हमने क्या किया, उन सब विशेष को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया, बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं। और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई। नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले, कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा, आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे, क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है इसकी अब आदत हो गई है, ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं। कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है अब हमें उससे ही डर लगता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है। लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक, उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना। गाने का नाम है तारे। 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi.
3: Iska bana, uska bana, sabka bana. Kya bana? Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
5: हाँ जी कौन?
4: हेलो, किससे
5: बात करनी है?
4: अभी
5: किससे बात करनी है?
4: भैया नंबर चेक करके
5: दोबारा मिला?
4: पागल
5: पागल पता नहीं कौन बोल रहा था।
6: इको आ रहा है, इको।
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा
4: हूँ।
5: नंबर देख के मिला?
4: हेलो
5: हेलो
4: भैया,
5: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है।
4: भैया
5: अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
4: पागल
5: कहीं का?
6: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? बुरा मत मानिएगा प्लीज।
4: रवि है।
6: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
4: कुकड़ू को
6: भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने भाई। आप खत्म कर दो यार।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
8: The show was absolutely amazing.
9: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
10: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

0: होगी।
1: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज. साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से. आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी. आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है. एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था. एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर. एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा. एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था. ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था. कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था. ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है. बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था. एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया. दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील. एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन. वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना. दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना एडिट ऑफ डेट बनी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gana Gana Mein Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanak on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेगा और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग, राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे, गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
7: The show was absolutely amazing.
8: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: हर्ष नसी की आवाज, हर्ष नसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कंपोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्प्रेरी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ्स लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
5: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
4: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
8: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, mera handle is at RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs, kuch aise bhi gaane hote hain which deserve a special shout out. Aise hi gaane ke bare mein baat karne wali hoon. It's called
3: Boom Shakalaka, Tere Bandook Shakalaka, Chillare Boom Shakalaka, Dilade Boom Shakalaka.
2: गाने का नाम है बूम शाकलाका एंड आई एम श्योर ये गाना ये फ्रेज आपने जरूर सुना है. गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा बिकॉज इट्स एवरीवेयर. ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है. वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना. हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है. छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट्स. कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट. बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया. उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन. हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है. इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे. और अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकालाका. इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस. ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकालाका. अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेका. एंजॉय.

This song is a perfect concoction of Krishna, Dhandanyoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli baar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करा है उड़ी उड़ी. दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा. गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय. नंबर 2.

0: किसी की याद ना ऐसे अचानक से नहीं आती। एक कोई गाना बजता है, किसी परफ्यूम की स्मेल आती है, किसी पुरानी गली से गुजर रहे होते हो, या फिर किसी एक रेस्टोरेंट में एक मेन्यू में एक डिश नजर आ जाती है। सामने नहीं होता वो इंसान, लेकिन पूरा का पूरा इंसान और वो वक्त जो उसके साथ बिताया था सामने आ जाता है, राइट?
1: मिर्ची कैफे
0: शुरू हो गया है। शो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। अभी अभी आपने सुना यारियां फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल। यार ये जो मूवीज में रिप्राइज वर्जन होते हैं ना गानों के, उनकी एक अलग लीग होनी चाहिए। नहीं, दे जस्ट टच यू अ लॉट ऑफ प्लेसेस और मेमोरीज रिवाइव हो जाती है। नहीं, वेल अगला गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक ऐसा ही मेमोरेबल के की आवाज में। द सॉन्ग इज कॉल्ड अभी अभी, और आपको पता है ये आर्को प्रावो मुखर्जी ने गाया भी है और लिखा भी है। आप ना एक लाइन सुनना बस इस गाने की। द लाइन सेज, अभी अभी दिल की सुनी है, अभी ना करो जमाने की बात। इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस सॉन्ग। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। सुनते रहिए, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: fiesta la burka. Mirchi, burka. हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग.
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
1: हाँ,
2: sure. अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी.
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ,
1: आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो.
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें
2: नहीं,
1: कर
2: नहीं
1: रहे हैं.
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं असली मुझे दिख रही है. असली बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: नहीं
2: नहीं, तमीज सीखिए. नहीं तमीज,
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है.
2: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया.
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज़ ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: जब ये गाना आपके लिए मैंने चला रखा था, मैं एक बात सोच रही थी, देखा हजारों दफा, इजंट इट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फॉलिंग इन लव एट द फर्स्ट साइट। कभी कभी होता है ना लाइफ में कि बहुत बार हम उस शख्स से मिले लेकिन कभी भी वो प्यार वाली फीलिंग नहीं आई, बट वन डे।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और आपको पता है मेरे एक चाचू हैं, ही इज अप्रॉक्स 55 इयर्स ओल्ड। उन्होंने अभी रिसेंटली गिटार सीखना शुरू किया, सो ऑब्वियसली एवरीबॉडी अराउंड हिम क्यूरियस, एंड प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को थी कि भाई तुम अब क्या ही करोगे गिटार सीख के, क्या ही फायदा। ही जस्ट सेड अ सिंपल थिंग कि यार 20 साल की उम्र से मुझे गिटार सीखने का शौक था फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग अटेंशन, लेकिन यू नो जिम्मेदारियां, वक्त नहीं मिला, पर अब मेरे पास वक्त है और क्यों नहीं सीखूं मैं। एंड ही इज सो हैप्पी जब वो ऐसे कोशिश करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। और चाचू की तरह जितने भी लोग हैं जो यू नो कभी भी कुछ भी लाइफ में ट्राई करना चाहते हैं, उनको मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, दिलदार तो दूसरों के लिए बहुत बन लिए ना, अब खुद के लिए थोड़ा सा खुदगर्ज हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, इट्स हॉट।
2: साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: के नशाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: कुछ लोग जब लिखते हैं ना तो उनकी कलम से इमोशंस की बारिश हो रही होती है।
2: मिर्ची कैफे
1: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये गाना जिए क्यों, इट टचेस अ लॉट ऑफ इमोशंस इन लॉट ऑफ पीपल। लिखा है जयदीप सानी साहब ने। हु कैन थिंक ऑफ अ लाइन लाइक करारी चाय, यू नो, रात लाजमी जालिमी रात, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो दिन तो कट जाता है पर रात नहीं कटती। आपको पता है जयदीप सानी साहब ने और कौन कौन से लिरिक्स लिखे हैं, जस्ट लिसन टू दिस, ठीक है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, नस नस मेरी खोले, चक दे इंडिया। मतलब यार, हैट्स ऑफ टू द लिरिसिस्ट। ये गाना पापोन की आवाज में आपने सुना, जिए क्यों फ्रॉम द मूवी दम मारो दम। और अच्छे लिरिक्स और अच्छे गानों की बात हो ही रही है, अगले गाने की तरफ आपको लेके चलती हूँ। अमिताभ भट्टाचार्य, अमेजिंग राइटर अगेन, पापोन की आवाज अगेन, दिस इज फ्रॉम द फिल्म मेट्रो। इन दिनों यार मोस्टली मैं चाहती हूँ आपके लिए ऐसे गाने लेकर आऊं जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े, गाने सीधा आपके दिल में उतरते रहे। हियर इट इज अगेन, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कायदे से। सुनो इसको, सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: एब्सोल्यूट फुल मार्क्स. एक्चुअली जिंदगानी पहेली ही तो है. सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना ये अमेजिंग गाना
1: मिर्ची कैफे.
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. कोई एक इंसान ऐसा सबकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए जिसमें आपको दिखावे बनावट की जरूरत ना पड़े यार. बिकॉज वही फिर पहेली बन जाता है क्योंकि हम कुछ और बन रहे हैं जो हम हैं नहीं. करते हो ना आप भी ऐसा? अपनी स्किन हटा के देखो. मतलब बिग बॉस में नहीं जी रहे हो यार तुम असली जिंदगी में जी रहे हो. जस्ट बी योरसेल्फ. और जब वो इंसान मिल जाता है जिसके साथ सारी टेढ़ी मेढ़ी उलझी बातें बकवास कर सकते हैं हम, तो फिर उतनी पहेली नहीं रहती जिंदगी और फिर लगता है कि सब कुछ ब्यूटीफुल है. अच्छा एक सीक्रेट बताओ, क्या आपने भी ये नोटिस किया है कि अगर आप किसी से बहुत बातें करते हो तो आपको उसी इंसान से और ज्यादा बातें करने का मन होता है? क्योंकि फिर वो कॉन्टेक्स्ट कौन दे यार कि मैंने उसको कल जो बताया था अब फिर नए सिरे से किसी और को कैसे बताऊं कि क्या कहानी चल रही है जिंदगी में. अगर ऐसा है तो आप भी मेरे जैसे हैं. चलो कनेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे. आपको मैं मिलूंगी paruls.world के नाम से और नंबर है मेरा 7045983983. जहां भी आप कनेक्ट करना चाहो लेट्स कनेक्ट. ऑल्सो यू हैव टू टेल मी कि आपको कौन सा गाना सुनना है इस शो पे. ओके फिलहाल अगला आपके लिए आ रहा है अरिजीत सिंह और प्रिया श्रेया की आवाज में. वही जो हम बात कर रहे थे ना, जब कोई मिल जाता है ना वैसा वाला जिससे खूब पटर पटर कर सकते हैं तो अच्छा लगता है. लिसन टू दिस, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे. मैं हूँ आपके साथ पारुल. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं यार, दोस्त रिटायरमेंट प्लानिंग में लगे हैं और मेरा तो अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत बुरा लगता है, क्या करूं?
1: तू एक काम कर, 22 साल की उम्र वाले दोस्त बना, फिर दिक्कत ही नहीं होगी, समझे?

0: कितनी सारी ऐसी दास्तानें होती हैं ना जो हमारे अंदर ठहरी हुई होती हैं ऑफ आर ओल्ड मेमोरीज।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची। आई रिमेम्बर जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था, आई वॉज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। स्कूल के बाद सब अपने अपने कॉलेज में लग गए, बायो वाली फ्रेंड्स सब डॉक्टरी की पढ़ाई में जिंदगी बिताने लगी, किसी की शादी हो गई, कोई दूसरे शहर चला गया, कोई पढ़ने के लिए या जॉब्स के लिए दूसरे शहर में चला गया, और फिर नए दोस्त बनते चले गए। नहीं, पर एक वो होता है ना कि जो पहले वाले दोस्त आपको जानते हैं जिस तरीके से, वो नए दोस्त नहीं जान पाते हैं। एंड यू इवेंचुअली आप ग्रो करते हो मैच्योरिटी में और अलग अलग लेवल्स में। सो हुआ क्या कि मेरा बर्थडे आया, जो मेरे उस वक्त के खास दोस्त थे आसपास के, उन्होंने काफी अच्छा सा पार्टी अरेंज किया, मस्ती किया एंड ऑल दैट। मेरी ना एक पुरानी दोस्त है, उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि हे क्या कर रही है, आई एम श्योर तेरे लिए कोई ना कोई चॉकलेट केक लेकर आया होगा और तुझे चॉकलेट केक नहीं पसंद ना। एंड मैंने बस ये फोन कॉल सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जस्ट दैट कि आप जितने रॉ स्कूल कॉलेज में होते हो ना दोस्तों के साथ, जिस तरीके से वो आपको जानते हैं, बाद वालों को शायद आप बताना भी नहीं चाहते, और वो बॉन्ड बन पाता है या नहीं, इट डिपेंड्स टोटली। लेकिन हाँ, ये चीज मुझे याद आई तो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि कभी कभी ना बहुत सारी भीड़ के बावजूद भी फील होता है अकेला, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पास आपके दोस्त हैं पुराने वाले, प्लीज उनसे चिपक के रहो, चाहे वो इरिटेट हो जाएं आपसे, बट कल्ले रहने से तो अच्छा है ना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे, मैं हूँ आपके साथ पारुल। इट्स हॉट।

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: ये जो इश्क दे फनियर है ना, ये बहुत ही फनी फनी जगह पर लग जाते हैं कुछ लोगों को, मैं बता रही हूँ आपको।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आपको पता है सुबह सुबह जिम जाओ, ठीक है, वहां भी कुछ इश्क दे फनियर चल रहे होते हैं। अगर आप ऑफिस जाओ वहां भी चल रहे होते हैं। अगर आप यू नो सोसाइटी में नीचे घूमने निकल जाओ अपने घर के नीचे, तो वहां भी कुछ चल रहे होते हैं। स्कूल कॉलेज एवरीवेयर आई टेल यू। तो इन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी, जिनको जहां देखो वहां इश्क मिल जा रहा है, कि भाई गूगल मैप्स भी अभी ये बताने में तुम्हें असमर्थ है कि प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। अपना नहीं है मेरा, कहीं पढ़ा था, अच्छा लगा तो सोचा आपको भी बताऊं। वेल, ये ना जेनरेशंस वाइज प्यार और इश्क डिफर कर रहा है अभी। तो अब यार हम जो मिलेनियल्स है ना, हमें ये ब्रेड क्रमिंग और ये सब समझ में नहीं आ रही है। हम इस वाली जेनरेशन के हैं। जो अगला गाना आ रहा है सोनू निगम और अलका याग्निक की प्यारी आवाजों में, सुनो इस गाने को। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Is that Mr. Vipul?
3: Yes.
4: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके।
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: हैंड मिलता है,
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे के कभी? और इसमें
3: क्या बकवास कर रहा है?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
3: हाँ, हु आर यू?
4: सर मनीष।
3: हु आर यू?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: अपनी टाइम मशीन से 2004 से आपके लिए गाना लेकर आई मैं. एंड यू नो वीर ज़ारा का जो पूरा एल्बम है, इट्स अ होलसम एल्बम. नहीं
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. ये देखो जी, लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में मैंने आपको ये सुनाया. अच्छा बाय द वे, आपको पता है वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी का जो किरदार है वो एक्चुअली ऐश्वर्या राय के लिए लिखा गया था, बट देन फॉर सम रीजंस वो नहीं प्ले कर पाई ये पार्ट और ये रानी मुखर्जी ने प्ले किया एंड इट बिकेम अ क्लासिक. ऐसे ही ना जिंदगी में बहुत सारे आपने देखी होंगी चीजें जो आपके लिए नहीं होती, आप चाहते हो बहुत सारा, बट कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान्स आर बिगर देन योर प्लान्स. तो ये शब्द जो है तेरे लिए, ये नोट करके रख लो, क्योंकि जो तेरे लिए है ना दोस्त वो तुझे मिल जाएगा. हो सकता है थोड़ी देर लगे, तुझे समझ ना आए, पर जो तेरे लिए है वो तेरे लिए है. अगला गाना फिर से तेरे लिए, फ्रॉम द फिल्म फितूर. ये आप सुनोगे सुनिधि चौहान और जुबिन नौटियाल की आवाज में. आई थिंक ये गाना आपने नहीं सुना होगा, बट जस्ट गिव इट अ हियर. यू नो कुछ गाने होते हैं ना जो फिल्म में ऐसे दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले गाने होते हैं जिनको हम शायद सुनते हैं और भूल जाते हैं. दिस इज वन ऑफ देम, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक. सुनो इसको, मिलते हुए छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे. मैं हूं आपके साथ पारुल. इट्स हॉट.
2: मैंने

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: दूंगा।
1: ऐसे ही मैं भी ले आती हूँ आपके लिए ऐसे ऐसे गाने जो शायद आपने नहीं सुने हो या फिर आप भूल चुके हो।
2: मिर्ची कैफे,
1: मिर्ची कैफे इज द शो। मेरा नाम है पारुल। आपको पता है ये फिल्म सत्य प्रेम की कथा से ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में एंड कियारा आडवाणी एंड कार्तिक आर्यन। आपने वो फिल्म पक्का देखी होगी, बट आपको ये गाना याद था नहीं होगा। सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक ना। ऐसे बहुत सारे गाने हम भूल जाते हैं, ऐसे भूले बिसर जाते हैं हमारे लिए। वेल, आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल रिसर्च में ये पता चला है कि आफ्टर 33 ईयर्स, मतलब जब आप 33 साल के हो जाते हो 33 ईयर्स के, उसके बाद आप नया गाना उस तरीके से कंज्यूम करना बंद कर देते हो। देन यू ओनली लिसन टू द सॉन्ग्स विच यू रियली लाइक ऑलरेडी लाइक। नए गानों में उतनी शिद्दत नहीं लगाते आप। सीरियसली, क्या आप भी ऐसा करते हो? ये ग्लोबल रिसर्च है। आई वांट टू नो अबाउट यू। क्या आपको नए गाने सुनना पसंद है? ऑफ कोर्स, तभी आप मेरा शो सुनते हो। नहीं, मिर्ची कैफे इज द शो। paruls.world के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। प्लीज मुझे बताओ कि कैसे गाने आपको सुनना पसंद है और आप कैसे गाने मेरे शो पे सुनना चाहते हो। ऑल्सो आप ये बताओ कि कौन सा गाना आज के पूरे 2 घंटे के इस प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छा लगा। ओके, प्लीज यू राइट टू मी। नंबर भी है मेरा एक व्हाट्सएप का, 7045983983। यू कैन से हाई पारुल, मिर्ची कैफे, जो भी लिखकर आप उसके बारे में लिख सकते हो। ओके, बट प्लीज ये याद रखो हमेशा कि गाने ही एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं कौन सी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। हमें भी नहीं पता कि कौन सा गाना सुन के कौन सा इमोशन स्ट्राइक होगा हमारे अंदर से, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, ट्रस्ट मी। तो गाने सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई सी भी एज हो जाए आपकी। तो वेल, अब मेरे जाने का वक्त यहाँ से हो चुका है। अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम पे आप मुलाकात कर सकते हैं, एंड अभी के लिए बाय टाटा। अपना ख्याल रखो और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो, क्योंकि जिंदगी कितने पल की है सुनो केके की आवाज में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

और बड़ा ही एक अमेजिंग सा वाकया हुआ। ऑफिस से घर जा रहा था, गाड़ी लेकर नहीं आया था, तो एक ऑटो बुक किया। ऑटो में बैठा तो उन्होंने दिख गया उन्हें कि रेडियो मिर्ची से हूँ, क्योंकि बुक वहीं से करी थी। तो कहने लगे, अरे अच्छा आप आरजे हैं। उसके बाद अंग्रेजी में बात करने लगे। मैंने बोला, अरे अच्छा जी, तो बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है और मेरे पास ये ये ये ये डिग्री हैं। डिग्री गिनाने लगे। मैंने बोला, क्या हुआ फिर, आप ऑटो चला रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा, जिंदगी के हालात हमें यहाँ पे ले आए हैं छोटे, अब क्या सुनाए तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी। ज्यादा तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन लाला माधव राम जौहर साहब का एक शेर याद आ गया मुझे उनकी बात सुन के। कह गए कि जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ए आसमान मैं भी कभी आफताब था। आफताब बोले तो सन है ना। जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ए आसमान मैं भी कभी आफताब था। तो कई बार जब आप प्रिज्यूम करते हैं कि कोई इंसान क्या हो सकता है, अगर आप उसकी जिंदगी को ना जानते हो तो प्रिज्यूम ना ही करना बेहतर है। रेडियो इंडो मिर्ची, ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Is that Mr. Vipul?
3: Yes.
4: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके।
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: मिलता है,
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
3: Talking about?
4: और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
3: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग,
4: ओके? मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना। सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपका ताशी रूबरू कराए आपको हमारे आज के फनकार, हमारे आज के शायर कुमार पाशी साहब से। अब ये बिल्कुल मेरा ही पिछला जन्म हो सकते हैं, 1935 से 1992 तक जिए कुमार पाशी साहब, दिल्ली में रहे और बड़े ही प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट पोएट रहे, जो कि एक लिटरेरी मैगजीन आती थी सतूर, उसके भी संपादक रहे। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है उनका जो मुझे बड़ा पसंद है। लिखते हैं कि कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, जाने वाले दोस्त की अब एक यही निशानी बाकी है। वाह वाह वाह वाह। और कई बार ऐसी होता है यार, शख्स तो चला जाता है और आप उसके बारे में जो लिख के छोड़ गए होते हैं, है ना, वही बच जाता है। एक कहानी खत्म हुई है, एक कहानी बाकी है, मैं बेशक मिसमार हूं लेकिन मेरा सानी बाकी है। कुमार पाशी साहब की बड़ी खूबसूरत गजल। स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। एग्जैक्टली राइट, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और एक शख्स से मुलाकात हुई, बड़े प्रैक्टिकल टाइप के इंसान थे, और थोड़ी देर बैठे तो हमें ज्ञान देने लगे। कह रहे थे कि अरे क्या आप ये उर्दू अदब शायरी इश्क विश्क के चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया है, गला रेत देती है ये दुनिया, ऐसा वैसा यू नो ज्ञान दे रहे थे बेसिकली, है ना। तो जहन में हमारे एक शेर तो गौंधा, और जाते जाते हमने वो शेर उन्हें चिपका ही दिया। समीना राजा साहिबा का शेर है, आपको नजर कर रहे हैं। कहती हैं कि शायरी झूठ सही, इश्क फसाना ही सही, शायरी झूठ सही, इश्क फसाना ही सही, जिंदा रहने के लिए कोई बहाना ही सही। तो भाई हर कोई अपने अपने बहाने से जी रहा है, क्यों उनकी जिंदगी में जाके टांग अड़ानी है कि नहीं। स्टेडियम टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
4: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
3: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और आ गया है मेरा पसंदीदा हिस्सा
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, और आज के ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, जो कि एक बड़े ही रेवर्ड हमारे सूफी पोएट हुए पंजाब से 17th century में, उनका लिखा हुआ एक ऐसा गाना जो कि सदियों दर सदियों रिक्रिएट होता आया है और आज भी हम सब की जबान पे है। दिस इज तेरे जया होर दिसदा।

अगर आपको ये नगमा पसंद आया हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर, और वहां आपको मिल जाएंगी मेरी आवाज में कई सारी गजलें, कई सारे ऐसे ही नगमे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: क्या बताऊं यार, दोस्त रिटायरमेंट प्लानिंग में लगे हैं और मेरा तो अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत बुरा लगता है, क्या करूं?
1: तू एक काम कर, 22 साल की उम्र वाले दोस्त बना, फिर दिक्कत ही नहीं होगी, समझे?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और कई बार जिंदगी जीते हुए लोग भी आपको समझ लेते हैं कि आप उनसे ही हैं, आप भी ये दुनिया का खेल खेलेंगे जो वो सबके साथ खेलते आए हैं। तो उनके लिए, वैसे लोगों को सुनाने के लिए मैं एक शेर आपको देता हूँ आज। बिल्कुल जी, अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है, कहते हैं कि दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। तो डू नॉट इक्वेट मी टू योर सेल्फ, मुझे अपने जैसा मत समझो। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. हाँ. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं,
2: हाँ, आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं. हाँ? नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें
3: नहीं,
2: कर रहे
3: हैं. नकली तरीके से? क्या
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई बपौती
3: है? तमीज सीखिए. नहीं, तमीज
2: नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर अब वक्त है कि
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर,
1: आपका ताशी आपको सुनाए आज का किस्सा जो आ रहा है बशीर बद्र साहब की जानिब से। कुछ मुश्किल लफ्जों का आसान तर्जुमा ट्रांसलेशन किया गया है। आजमगढ़ के कस्बा में सामईन का जो ऑडियंस थी उनका ये मूड हो गया कि पुरानी गजल और पुराने कलाम नहीं सुनेंगे। बेकल उत्साही और वसीम बरेलवी जितनी गजलें उन्हें याद थीं सबका पहला मिसरा सुनाने लगे और मजमे से आवाज आती रही कि सुनी हुई है, सुनी हुई है। आखिरकार उन लोगों ने मोहलत मांगी कि जहां ठहरे थे वहां से अपनी अपनी डायरी ले आए। बशीर बद्र भी परेशान कि कौन सी गजल पढ़ें। उनके पास एक और शायर बैठे थे, वो बशीर बद्र को एक मिसरा सुनाते और पूछते कि ये गजल पढ़ लूं, फिर वो खुद कहते ये गजल मैं वहां पढ़ चुका हूं, देखिए ये गजल पढ़ लूं, फिर वो कहते कि ये मैं फला कस्बे में पढ़ चुका हूं। आखिरकार बशीर बद्र ने तंग आकर कहा, भाई तुम सब खुशनसीब शायर हो, तुम्हारा कोई शेर किसी को याद ही नहीं रह सकता, ना यकीन आए तो तुम वही गजल पढ़ के देख लो जो पिछले बरस यहां पढ़ चुके हो। मतलब अगर अंग्रेजी की कहावत पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड किसी के बारे में सही बैठती है तो वो है हमारे शायर। ऐसे ही और किस्सों, नगमों और गजलों के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके दाशी है आपके साथ और अंत में पता चलता है कि सारा दोष ख्वाहिशों का ही था। बिल्कुल, अब देखें आप जॉन का शेर है कि जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतजार अच्छा था। वस्ल मतलब मिलना और इंतजार तो आप जानते ही हैं। तो कई बार ना जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं, जब वो मिलता है तो आपको लगता है बस यही था, इसी का इंतजार कर रहा था मैं। जानलेवा थी ख्वाहिशें, लेकिन ख्वाहिशें भी पूरा करना बड़ा जरूरी होता है। जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतजार अच्छा था। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, ताशी आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
4: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
3: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड पौडवाल
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
0: Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है आपका ताशी पलटे और पढ़े अपनी डायरी के कुछ सफे।
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।
1: मेरी दोस्त, एक जमाने की बात है, मेरा बड़ा बुरा दिल टूटा था और मैंने सोचा क्यों ना अपने गम को प्रोडक्टिव बनाया जाए और अपने दर्द को भुलाने के लिए उसे बैक बर्नर में डालने के लिए सबसे सही रास्ता मैंने समझा काम। अजी, ये वो जमाना था जब अपने ख्यालों की चीखें काम के हेडफोन लगा के दबा देते थे हम। कुछ सालों बाद मैंने पढ़ा कि जावेद अख्तर के वालिद जानिसार अख्तर साहब भी ऐसी ही कश्मकश से गुजरे थे और जब गुजरे थे तो उन्होंने लिखा था, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। इल्म का मतलब नॉलेज होता है और रिसाले मतलब मैगजीन्स। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। जान के थोड़ा अच्छा लगा कि अकेला नहीं हूं जिसने डिप्रेशन को एग्जॉशन से बहाल करने की कोशिश करी। लेकिन उसके दिए खत आज भी हैं मेरे पास। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
1: मेरी ऑफिस में बहुत बकवास चाय मिलती है, क्या करूं?
0: अगर ऐसा है तो टपरी पे काम करना स्टार्ट कर, उधर तेरे को चाय मस्त मिलेगी।
2: खोपड़ी तोड़ साले का।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका दाशी आपके साथ। और हिंदी में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं कि किसी का दानव किसी का देवता। हम सब की पर्सनैलिटी ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। बिल्कुल। और इसी पे मुझे एक बड़ा सटीक वसीम बरेलवी साहब का शेर मिला। लिखते हैं कि वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। एंड यू सी हाउ ही फ्लिप्स पर्सनैलिटीज। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। एंड आई थिंक ये हम सबका सलीम बरेलवी साहब का शेर मिला। लिखते हैं कि वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। एंड यू सी हाउ ही फ्लिप्स पर्सनैलिटीज। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए,

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी कौन
0: हाँ जी कौन
1: हेलो किससे बात करनी है?
0: किससे बात करनी है
1: भैया? किससे बात
0: करनी है? किससे बात करनी है
1: भैया? नंबर चेक करके
0: दोबारा मिला
1: पागल
0: पागल पता नहीं कौन बोल रहा था।
2: इको आ रहा है इको।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जैन साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ। नंबर देख के मिला।
1: हेलो
0: हेलो
1: भैया क्यों परेशान कर
0: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है
1: हैं भैया?
0: अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा। नंबर आ गया मेरे पास।
1: पागल
0: कहीं का
2: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
1: रवि
2: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
1: भाई।
2: आप खत्म कर दो यार।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और ऐसा जिंदगी में शायद आपके साथ भी हुआ हो।
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि जब आप जिससे प्यार करते थे वो शहर में कहीं टकरा जाए आपसे, और माहौल कुछ ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करें। हाँ जी, ऐसा ही जब हाल में मेरे साथ हुआ तो घर वापस लौटते वक्त गाड़ी में बैठे हुए जहन में जावेद अख्तर साहब की गजल के शेर तैर रहे थे कि याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। डर हमको भी लगता है रस्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर ऐ दिल अब जाना तो होगा। और शेर मुकम्मल है दोस्त की, कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। ये जो आखिरी शेर है ना, मेरा बड़ा पसंदीदा है, और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इसका सच बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। फिलहाल सुनते रहे मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी आपके साथ। और कुछ लोग की ना शख्सियत ऐसी होती है कि वो खुद को आइसोलेट करते हैं, खुद को लोगों से काटते हैं। और ऐसे लोग ना, मैं भी उनमें से ही एक हूं, ऐसे लोग हमेशा कुछ अकेले से रह जाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए अहमद मुश्ताक साहब का ये शेर है, लिखते हैं कि मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी। सबक देखें कितना प्यारा है, कहते हैं मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी, जिंदगी आवाज है, बातें करो बातें करो। क्या बात है, जिंदगी आवाज है, सबूत तो मिलना चाहिए ना भाई अगर कोई जिंदा है तो। जिंदगी आवाज है, बातें करो बातें करो, मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी, तो चुप मत रहिएगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: जॉन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
5: दिल ने कहा चुपके से ये क्या हुआ

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और वक्त हो चला है मिर्ची महफिल से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, और आज के ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, जो कि एक बड़े ही रेवर्ड हमारे सूफी पोएट हुए पंजाब से 17th सेंचुरी में, उनका लिखा हुआ एक ऐसा गाना जो कि सदियों दर सदियों रिक्रिएट होता आया है और आज भी हम सब की जबान पे है। दिस इज तेरे जया होर दिसदा।

वाह जी वाह, बुल्ले शाह साहब के जो लफ्ज हैं वो अजय हैं, मतलब उनसे कोई जीत नहीं सकता और वो चले आ रहे हैं कितनी से 17 सेंचुरी में लिखा गया था और आज तक गाया जा रहा है जब 21वीं शताब्दी तक, कुछ तो बात है कि नहीं। बहरहाल आप मिल सकते हैं मुझसे मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

89.6 Mirchi 1. It's hot.